0: शाम 8 to 9 जितेंद्र पन्नू रेडियो सुरसंगम .ca फोन 403-585-0910 रेडियो सुरसंगम
1: जब भी जरूरत पड़ती है अल्बर्टा वासी एकजुट हो जाते हैं और आगामी जनमत संग्रह बहुत मायने रखता है ये अल्बर्टा वासियों को अपने प्रांत पर अधिक अधिकार दे सकता है हमारे न्यायाधीशों की नियुक्ति ओटावा के बजाय अल्बर्टा द्वारा की जाए और हमें अपनी ऊर्जा आप्रवासन और सामाजिक सेवाओं पर अधिक अधिकार मिले 19 अक्टूबर को एकजुट कैनेडा के भीतर एक मजबूत और स्वायत्त अल्बर्टा के लिए अपनी आवाज बुलंद करें वेबसाइट पर जाएं अल्बर्टा रेफरेंडम 2026.ca इस विज्ञापन का भुगतान अल्बर्टा सरकार द्वारा किया गया है
2: Whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands, listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app, available now for free on your device's player or app store, connecting you to the community, anytime, anywhere.
3: Calgary's oldest, biggest and only South Asian radio station, Sabarang Radio 94.7 FM.
4: Monday, Tuesday, Thursday, Friday 7 to 8pm, Sundays 1 to 5pm.
3: Visit sabarang.ca.
5: अल्बर्टा में संगठित अपराध के लिए कोई जगह नहीं है हम पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता के लिए $8 मिलियन का निवेश कर रहे हैं ताकि अल्बर्टा के परिवारों व्यवसायों और समुदायों के लिए खतरा बने गैंग्स एक्सटॉर्शन और आपराधिक नेटवर्कों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके यह धन कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अधिक मजबूत निगरानी खुफिया जानकारी डिजिटल फोरेंसिक और जाँच क्षमताएं प्रदान करेगा ताकि संगठित आपराधिक गिरोहों को खत्म किया जा सके और अल्बर्टा वासियों को सुरक्षित रखा जा सके अल्बर्टा सरकार की ओर से एक संदेश
6: The following program speaks to the East Indian community uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio the multicultural spirit of Calgary CHKF 94.7 FM

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदा। You are listening to Calgary's most popular radio, Radio Sabrang, 94.7 FM.
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrang Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network.
0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca।
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
5: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए। सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर, जहां होता है एनर्जी, एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन। चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं। हमारी टीम पहुंचती है आपके पास, लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में। ज्यादा पहचान, ज्यादा भरोसा, ज्यादा ग्राहक। अपने बिजनेस को बनाइए खास, दिखाइए, सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए। आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ, आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी। Monday, Tuesday, Thursday and Friday 7 to 8 p.m. Sunday 1 to 5 p.m.
6: Asia Pacific Immigration Consulting Limited. Student visa, visitor visa, super visa, LMIA applications, family immigration, provincial nominee application, ate citizenship application vich lamba tajruba te maharat rakhta hai. Tuhadi sahulat layi main Maninder Singh Tillon ate Inderjot Kaur Tillon ikko chhat het immigration ate insurance diyan sewawan pradan karde han. Sanu sampark karn layi 403-225-1111. Maninder Singh Tillon, Asia Pacific Immigration Consulting Limited.
7: Regulated Canadian Immigration Consultant.
6: 403-225-1111.
5: From the heart of Calgary to every corner within a 250 kilometer reach, Sabrang Radio is connecting voices, stories and communities like never before. Whether you're in Calgary, Airdrie, Chestermere, Cochrane, or tuning in from Okotoks, High River, Strathmore and beyond, we are one sound, one family,

0: पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंद दी फ्लोरिंग दा समान। फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल, नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान, कारपेट हार्डवुड लेमिनेट टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनर नाल भरिया है इना दा शोरूम। अज ही इना दे शोरूम ते पुजो 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कैलगरी कारपेट एम्पायर। फोन नंबर 403-510-1515 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
2: ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, दालां, मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा। कीमतां कट ते क्वालिटी A1।
1: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
2: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां। हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक।
1: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर, पहली लोकेशन 331-3690 वेस्ट विंड ड्राइव,
2: दूजी लोकेशन 117-7770 एवेन्यू,
1: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कनरिज बुलेवार्ड,
2: चौथी लोकेशन 606 सिटी स्केप स्क्वायर,
1: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे,
2: छेवी लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी।
1: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
2: 403-835-2222।
3: अब यह अली मदद, मैं आपका होस्ट जलाल आपकी खिदमत हाजिर। आप सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं सलाम नमस्ते कैलगरी ऑन रेडियो सुसंगम 94.7 FM। आज यहाँ मंगल का दिन है तो सलाम नमस्ते कैलगरी का रेडियो सेगमेंट आपकी खिदमत में हाजिर। आज भी हमारे पास जो है बहुत ही अच्छे गेस्ट जो है यहाँ पर मौजूद है, तो आपने जाना कहीं नहीं है। कीप लिसनिंग टू सलाम नमस्ते कैलगरी ऑन रेडियो सुसंगम 94.7 FM। अभी 8:09 है, इंशाल्लाह विल बी हियर टिल 9 o'clock, सो कीप लिसनिंग। और ऑफकोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे यहाँ पर जो सलमा जी भी यहाँ पर मौजूद। हेलो सलमा जी, कैसे हैं?
4: हेलो जलाल, कैसे हैं? सब खैरियत, और उम्मीद है कि आप लोगों के यहाँ भी सब खैरियत होगी। सबसे पहले आप सब लोगों को सलाम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल याली मदद एंड अ ब्यूटीफुल इवनिंग है आज। और आज जब पत्ते गिर रहे थे बड़ा खूबसूरत लग रहा था, उधर थोड़ी हवा चल रही थी तो मैंने एक छोटा सा वीडियो भी निकाला। तो आई लव फॉल सीजन, उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। लेकिन बैड न्यूज इज अराउंड द कॉर्नर के वीकेंड को स्नो आने वाली है, तो आप लोग ये दो दिन जो है अच्छी तरह से एंजॉय कर लीजिए। बुध जुमेरात और जुम्मा, जुम्मे को बारिश का इम्कान है, बट सैटरडे तो काफी बर्फ आने वाली है, तो वो तो हमें पता है। तो चलें आप लोग, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। और जैसे कि जलाल ने बताया, हमारे गेस्ट आ चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे वो किस सिलसिले में आए हैं, तो हमारे साथ रहिएगा।
3: जी जी जी, थैंक यू सो मच। यू नो आपको जैसे पता है कि एवरी ईयर दिस टाइम शौकत खानम हॉस्पिटल का फंडरेजर कैलगरी में होता है फॉर लास्ट नंबर ऑफ इयर्स, ये कोई नया नहीं है। और वो जब भी होता है माशाल्लाह कैलगरी बहुत जो है बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेती है, सोल्ड आउट भी हो जाता है, और माशाल्लाह बहुत ज्यादा डोनेशन भी आता है फॉर द हॉस्पिटल फॉर द शौकत खानम। और तो इनकी यहाँ पे टीम मेंबर दो यहाँ पर मौजूद है, रिजवान। हेलो रिजवान, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप?
5: वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस।
3: उनके साथ हमारे कैलगरी के हीरो हैं वजाद फिरोज भाई, रियल्टर भी हैं और हीरो भी हैं। वजाद अस्सलाम वालेकुम।
6: नमस्ते याली मदद, सत श्री अकाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें बुलाने का यहाँ पे।
3: बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का,
4: आने का शुक्रिया शॉर्ट नोटिस।
3: तो यू नो हमने पिछले दो शो शुरू किए थे गुड न्यूज से, तो लेट्स स्टार्ट विद द गुड न्यूज के गुड न्यूज ट्यूजडे। आपका आज कोई भी गुड न्यूज हो, किसी का जन्मदिन, किसी की एनिवर्सरी हो, किसी को आपने हेल्प किया हो, किसी को आपने डोनेशन दिया हो, एनीथिंग, छोटी से छोटी खुशी,
6: हम जिस सिलसिले में शौकत खान के लिए ग्रेट न्यूज आपको न्यूज देते हैं कि कराची का जो हॉस्पिटल है वो अबाउट टू स्टार्ट इन दिसंबर, माशाल्लाह।
3: अच्छा माशाल्लाह,
6: तो ये हमारा तीसरा हॉस्पिटल पाकिस्तान में,
3: माशाल्लाह,
6: और ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पाकिस्तान का इस वक्त कराची में जो बन रहा है, 600 beds, टॉप ऑफ द टॉप नॉच जो है सारी टेक्नोलॉजी में यूज हो रही है, मशीन चल रही है, सब चीजें, और इंशाल्लाह। और अभी हमारा जो है वो 25th October को यहाँ पे फंडरेजिंग हो रही है, तो इसमें सारे हमारे कैलगरी हमेशा से जनरस रहा है, माशाल्लाह से हमने $500,000 भी यहाँ से इकट्ठा किए शौकत खानम के लिए। और यहाँ पे आप लोगों को फिर इन्विटेशन है दोबारा October 25th को संडे डेरा बैंकेट हॉल में है, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है हमारी फरजाना आपको बताएंगे।
3: अच्छा आपकी क्या गुड न्यूज है? एनीथिंग गुड न्यूज, मे बी कोई आपके स्टूडेंट को किसी ने अच्छा किया हो?
5: पीपल आर

0: party as well as we'll raise the funds for the developing countries.
1: Yeah.
0: Thank you so much. जी तो ऑफ कोर्स यू नो जैसे हम कह रहे थे कि जो है 25 अक्टूबर को शौकत खानम का होने जा रहा है फंड रेजर एट डेरा बैंकट हॉल और उनके जो टीम मेंबर्स हैं रिजवाना एंड वजाहत भाई यहां पर मौजूद हैं सो लेट्स स्टार्ट विद रिजवाना जी के इवेंट को ऑफ कोर्स वी आर अभी जैसे आपने कहा वजाहत भाई के रेजिंग फंड फॉर द कराची हॉस्पिटल तो उसमें क्या होगा कि वो लाइक व्हाट आर द डिटेल्स फॉर द हॉस्पिटल
2: सबसे बड़ा हॉस्पिटल इस वक्त जो है ना शौकत खान के पैनल पे वो कराची का बन रहा है
0: माशाल्लाह
2: कराची मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि मैं खुद कराची से हूँ वो भी है फीलिंग उसमें वहाँ पे सिंध और बलूचिस्तान से सारे दोनों को खान साहब के जो है शौकत खान वो कवर कर रहे हैं उनको जैसे रिजवान जी ने बताया कि अभी 75% हमारे लोग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं
0: माशाल्लाह
2: किसी का मजहब किसी की इज्जत किसी का कुछ नहीं देखा जाता ऑल वी सॉ के डिजर्व पीपल हैं एंड दे आर जस्ट वॉकिंग
0: माशाल्लाह
2: कोई वीआईपी वार्ड नहीं है हमारे शौकत
1: अच्छी बात है
2: एक एक कमरा है दो बेड है डॉक्टर को भी नहीं पता होता कि कौन किसके पैसे आ रहे हैं और कौन फ्री में लग रहा है प्राइवेसी
0: ब्यूटीफुल
2: क्यों किसी को ह्यूमिलेट नहीं करना चाहता कोई क्योंकि ग्रेट कॉज नोबल कॉज और इसमें जो है ना ये होता है और अबव ऑल के लाइक आई सेड के अभी 2026 माशाल्लाह अक्टूबर में है तो दिसंबर में हमारा खुलने वाला है
1: अच्छा
2: और अगेन और ये एक नोबल कॉज है जो जो सुन रहा है जो जो देख रहा है हमें प्लीज कम एंड सपोर्ट अस हमें आपकी जरूरत है आपका एक डॉलर भी जो है ना हमारे लिए बहुत ये कोई यहाँ पे एक और चीज में बताते चलो जरूर
0: बिल्कुल
2: जितने भी हमारे वॉलंटियर्स है सब फ्री ऑफ कॉस्ट है कोई पैनल पे पैसों पे नहीं किसी भी चैप्टर में हमारे पास काफी चैप्टर है कोई पैसे नहीं देते इवन के हमारे जो खाने होते हैं वो भी हमारे अपने ही लोग स्पॉन्सर करते हैं
0: जी
2: आज हमारे फरद भाई ने किया था नेक्स्ट वीक कोई और करेगा सर हमारे पैसे भी अपने मतलब कोई शौकत खान को एक टका हम उनसे नहीं लेते अपने फंड के लिए
1: राइट
2: तो हर चीज हम अपना टाइम देते हैं अपना पैसा देते हैं ठीक है ना और जो है ना अपने काम करते हैं क्योंकि इज अ नोबल कॉज हमें पता है कि इसमें हमारे लिए बहुत पोटेंशियल है फ्यूचर में और हो सकता है यही चीज हमारी बख्शिश का जरिया भी बन जाए
1: बिल्कुल सही कहा तो जो दूसरे दो हॉस्पिटल हैं क्योंकि काफी सारे लोग अब हमसे जुड़ते जा रहे हैं तो वो दोनों हॉस्पिटल कहाँ पर हैं और कितने बेड्स के
3: सबसे पहला तो जो है वो शौकत खानम लाहौर दैट वाज आवर वेरी फर्स्ट वन व्हिच वाज ओपन 1994 और वो उसका इतनी खूबसूरत उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी थी कि आई थिंक अ 9-year-old चाइल्ड शी वाज अ कैंसर पेशेंट एंड उसने उसका इफ्तिताह किया था एंड शी सर्वाइव एंड नाउ दैट गर्ल इज रनिंग हर बिजनेस she owns a shop in
1: okay,
3: the shop nice, and yeah. the cafeteria the shops hoti hain agarwal she runs that shop and it was so nice aur second phir hua tha 2016-15 I believe in Peshawar the Peshawar bhi aapko pata hai kitna rural area hai kitne zyada fata aur wo sara एरिया से वहाँ पेशेंट्स आते हैं और वो अब लाहौर में देखें कि पॉपुलेशन पाकिस्तान में स्पेशली पंजाब की पॉपुलेशन और जब शौकत खानम हॉस्पिटल बना था 1994 में आई रिमेम्बर तो इट वाज आउट ऑफ लाहौर सिटी नाउ आई व्हेन यू गो एंड यू हम जैसे लाहौर से हैं तो जब आप अब जाके देखें तो वो सेंटर में आ गया
1: सेंटर में आ गया सेंटर
3: में आ गया यानी इमेजिन द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इमेजिन द रिक्वायरमेंट ऑफ द हेल्थ केयर एंड द क्वालिटी केयर शौकत खानम इज रियली नोन फॉर इज क्वालिटी केयर और अब ये हमारा जो थर्ड माशाल्लाह कराची में बन रहा है इट्स ऑल अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन हु डोनेटेड इवन $1
1: लाइक
3: और हमारे जैसे हमारे स्पॉन्सरशिप के वो हैं प्लेजेस भी हैं आप फाउंडिंग मेंबर भी बन सकते हैं यू कम एंड डोनेट आपका वहाँ नाम लगा हो या ना लगा हो लेकिन अल्लाह के हाँ आपका दर्ज हो चुका है जहाँ जो अल्लाह के हाँ आपका दर्ज हो जाए कोई नेकी ये तो अल्लाह के काम है अल्लाह तो कहता है कि मैं एक की 700 उससे भी ज्यादा हु नोज अल्लाह आपकी मेहनत से दिया हुआ एक भी पैसा और अगर किसी के दुख को कम कर सके किसी के बच्चों को उनकी माँ लौटा सके किसी के बच्चों को उसका बाप लौटा सके किसी कैपेसिटी में अगर किसी की तकलीफ को वो रफा करने का बायस बन जाए तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी इससे कोई नहीं की और देखें बहुत से रस्ते मौलाना रूमी ने कहा था कि खुदा तक जाने के बहुत सारे रस्ते हैं लेकिन मैंने अल्लाह खुदा तक जाने का रास्ता मखलूक में से होकर

0: a standout there.
1: Yeah.
0: Shauka Khanum is our national Pakistani proud. Yeah. Above and beyond everything, Shauka Khanum is the hope.
1: Yeah.
0: When it comes to mine, Shauka Khanum is the hope.
1: That's
0: it's true. Life.
1: Mm-hmm.
0: So please come help us. Come hand in hand, help us to spread this hope.
1: Yeah.
0: Thank you so much.
1: तो और इनकी इनका टिकट कितना है और कितने बजे शुरू होगा ये भी बताते साथ साथ
2: टिकट जो है वो $100 का है
1: जी
2: ठीक है और आपको इसका जो टाइम हमने रखा है ब्लीस 7 क्लॉक का है
3: 6 पीएम
2: सर हमने रखा है क्योंकि संडे का दिन है नेक्स्ट डे फिर वो वर्किंग डेज है बच्चों का स्कूल भी होता है ठीक है तो $100 टिकट इसमें फुल आपकी फुल कोर्स मील है आपकी ठीक है आपकी जो उसके बाद है कि हमारे सिंगर भी हैं वो आप आपको बताएंगे कि हमारे सिंगर भी आ रहे हैं टोरंटो से उसमें थोड़ा सा जरा फन वाला भी है
1: अच्छा,
2: बहुत
1: अच्छा।
2: और ये जैसे आप बताया डेरा में हमारे कैपेसिटी माशाल्लाह ठीक ठाक है ठीक है
1: या।
2: तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है आपके वो हमारे हमसे डर से क्योंकि ये एक ऐसा नंबर कॉज है कि लोग इसमें आते हैं
1: जी
2: और लास्ट मोमेंट तक आते रहते हैं लास्ट टाइम मुझे याद है कि मैंने दो टिकट लास्ट मोमेंट में बेचे थे किसी ने कैंसिल कर दिया था
1: मगर
2: अब हमें वो डर नहीं है कि अब यहाँ पे लोग बढ़ जाएंगे जितने आने आ जाए 600-800 नो प्रॉब्लम वी कैन कैच इट
1: जी
2: तो इसमें कोई वैसे की बात नहीं हमारे पास
1: सही कह रहे हैं बिल्कुल बहुत अच्छी
3: वेरी वेल सर आज का जो शो इसको स्पॉन्सर किया है कंट्रोल स्टोर इनका फोन नंबर 4032901111 थिंक टोयोटा थिंक द जायंट कंट्रोल स्टोर मोबाइल मॉडल स्पेशलिस्ट रूबीना कासिम शी वर्क्स फॉर टीडी बैंक इनका फोन नंबर 4038707046 इफ यू नीड अ मॉर्गेज रेट वजाहत भाई यू कैन कॉल Rubina Kasamali, yes, because he is our realtor person here. Care Circle Home Health in Calgary. अगर आपके घर में कोई सीनियर अगर उनको कोई तो अगर आपको कोई अपना हेल्प चाहिए ऑफ कोर्स दे कैन कम एंड हेल्प यू एट योर प्लेस और ये जो है अपना हेल्थ केयर को डायरेक्ट बिल भी कर देंगे तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग नदीम खान इनका नाम इनका फोन नंबर है 5879000290 फिर हमारे दूसरे हैं बटका है बैंकट हॉल जो कि हमारा हमजा भट्ट का है अगर आपकी कोई छोटा इवेंट हो अबाउट 200 to 300 पीपल फॉर एनी एनिवर्सरी बर्थडे पार्टी यू कैन कॉल हमजा भाई 5873520094 नसीम ज्वेलर्स कैलगरी अगर आपने पाकिस्तान गोल्ड की डिजाइन चाहिए इन कैलगरी यू कैन गेट लाइक ओनली वन प्लेस नसीम ज्वेलर्स कैलगरी 8259875000 उनके जो ओनर है शहजाद मियन साहब और अगर आपने कॉन्टेक्ट लेंस लेने हैं सनग्लासेस या तो चश्मे बनवाने हैं आइस बशीर इन न्यू हॉराइजन मॉल 4037203937 तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद यू कैन टेल मी कि वो इंडियन में क्या होगा और वहां पे और जो है कौन जो है अपना जो है क्या नाम होंगे सेलिब्रिटी आ रहे हैं एंड देन ऑफ कोर्स वी कैन टॉक अबाउट मोर अबाउट द शोकन खानम हॉस्पिटल का जो फंड होने जा रहा है ऑन 25th October एट डेरा बैंक्वेट हॉल सो डोंट गो एनीवेयर लेट मी टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड विल बी राइट बैक अगर मुझे मेरी एडवर्टाइज मिल जाए तो Keep listening and watching.
1: There we go.
3: I think I got it now. Here we go. जल्दी जल्दी का काम कभी-कभी अच्छा नहीं होता. Here we go, guys. We'll be right back.
4: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो किसे भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे साडे तजुर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते पासपोर्ट तो लैके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए इक फोटो इक वार
5: ट्रक चाड़न लई थब्बा नोटां दा लगदा है होर ता होर ट्रकां दी इंश्योरेंस बंदे दा धुआं कढ दिंदी है ते दुहाइयां फिर बंदा पौंदा है
4: सुनो सुनो सुनो ट्रकिंग कंपनियां दे मालक ते ट्रक ओनर जरा ध्यान नाल सुनो ट्रकां दी सस्ती इंश्योरेंस दा हल हुण आ गया ट्रकां वास्ते इंश्योरेंस दे रेट लैण लई सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा नाल 587-832-1208 ते संपर्क करो तजुर्बेकार इंश्योरेंस ब्रोकर मानस पहुजा ते उनां दी टीम प्रोफेशनल सेवावां दिंदे हन बेस्ट ट्रक इंश्योरेंस रेट्स लई याद रखो सोनिक इंश्योरेंस 587

0: अनमूव कराना होवे तो स्टार मूविंग दे मलकीत सिंह जी नु अज ही कॉल करो 4038701790 403-870-1790 स्टार मूविंग
1: जी हाँ वेलकम बैक टू सलाम नमस्ते ख्याल के ऑन रेडियो सुसंगम 94.7 एफएम अब जिस हम बात कर रहे थे कि शौकत खानम का फंड रेजर होने जा रहा है अक्टूबर की 25 तारीख को है तो डेरा बैंक्वेट हॉल उन्हीं की टीम यहां पर मौजूद है इंक्लूडिंग रिजवाना जी एंड वजाहत फिरोज जो कि हमारे कैलरी के बहुत जाने पहचाने माने रियल्टर हैं अगर आपने घर बेचना हो तो अरे यार आपका फोन नंबर क्या है यार
2: 473
1: हाँ जोर से बोलो
2: 4037004444
1: आप घर लेना मेरा कमीशन रख देना ये वजह भाई तो ऑफकोर्स ये इवेंट जो है इट्स नॉट अबाउट ओनली द फंड रेजिंग आपको डिनर अच्छा मिलेगा फुल डिनर होगा लेकिन साथ में एंटरटेनमेंट पार्ट भी होगा तो एंटरटेनमेंट के लिए क्या होगा रिजवाना जी फुल सर विद यू
3: It's not only for fundraiser, it's the whole package.
1: जी.
3: So you will enjoy. It's going to be a delicious dinner.
1: Mm-hmm.
3: And then our guest celebrity, Hamza Ali Abbasi.
1: Mm-hmm.
3: Big fan following, yeah. all time
1: yes,
3: favorite.
1: Yes,
3: Everyone loves
1: yes,
3: him.
1: Yes.
3: He's a very talented artist and he's going to join us.
1: Mm-hmm.
3: And you will get a chance to meet him.
1: Meet him as well, yeah. yes.
3: So he's helping. He's very generous to helping us out with this very fundraiser.
1: Nice.
3: And after the fundraiser, and inshallah, we have a singer from Toronto, Tariq Hamid.
1: Tariq Hamid.
3: He's a Toronto-based singer, Pakistani, but maybe not many people know him, but you can Google him, you can search about him. He's a very talented singer. He can
1: nice.
3: He can sing any songs, and you know, event mein phir end pe songs or event ka proper jo finish up hota hai, wo to phir best entertainment hai.
4: Yeah.
3: And
4: yeah.
3: aap zarur hamare okay. program mein aaye, aur inshallah, You will enjoy.
4: Yeah, yeah. good. तो आपका तो बहुत अच्छा है ये fundraising, networking, delicious खाना, फिर हमजा आ रहे हैं. Sorry.
3: हमजा
4: लिया बासी आ रहे हैं. और on top of that, फिर इनकी entertainment, music and गाने. तो ये तो बहुत अच्छा show जाने वाला है. कोशिश करिएगा कि time से शुरू कर दें ताकि फिर काफी हमें time मिल जाता है ना जब शुरू हो जाता है time से तो बहुत अच्छा रहता है.
1: तो ये singer जो है तारिक हमीद है और जो कि Facebook पर मेरे friend भी हैं मैंने अभी मुझे पता चला
3: So, we learn something.
1: There we go. Tariq bhai, looking forward to meeting you. I'm going to take you right October now.
3: October 25th
1: or 6th.
4: October
1: 25th, 6th. So, I'm going to take you when you watch this show. So, yeah, thank you so much for coming. Inshallah, yeah, of course, we'll meet this time. I think, this is, aajkal, जिस तरह का माहौल बना हुआ है लोग आते हैं अपना टाइम देते हैं डोनेशन देते हैं आपको दे आस्क फॉर एंटरटेनमेंट या आपने अच्छा वो आपने ऐड भी कर दिया साथ में और आप ये जो वहां से जो सेलिब्रिटी आते हैं ना आई थिंक दिस इज अ रियली नाइस टच वैसे हमें तो जाने का मौका मिलता नहीं है वहां पे लेकिन फिर ये अच्छे सेलिब्रिटी आते हैं उनको हम टीवी में ड्रामों में देखते हैं इस तरह हम मिल लेते हैं आप ही के यू नो इसी बहाने
3: और देखेंगे इट्स नॉट ओनली द फंड रेजिंग इट्स अ कंप्लीट पैकेज टोटली यू कम You get to know the cause. You spend time with good people. Jo bhi is cause ke saath attach hai, you see the passion.
4: And you will feel the
3: passion in the air. How devoted from volunteers to everybody who's there, the donors, the everybody. It's like this crowd is so charged, the people are so charged, and it's like that's why Shauka Khanam is we always have our best events.
4: Yeah.
3: Every time we beat our own record.
4: Yeah.
3: And it's a total entertainment.
4: Yeah.
3: And above all, it's the legacy of hope.
4: Yeah.
1: Yeah.
3: For many.
4: Yeah.
3: For many underprivileged.
4: Yeah.
3: We never think about ki ek choti si cheez kitni badi privilege ho sakti hai. Sometimes main sochti hu, especially when I work with this younger generation as a teacher, there's so many things we take for granted.
4: Yeah.
3: We take for granted. We're living in such a beautiful city. In the clean air, clean water, beautiful people.
1: Beautiful, yes.
3: Respect.
1: Yeah, yeah.
3: In a multicultural city. And what else
4: we want.
3: What else we want. Like, what we need to teach.
4: Yeah.
3: There's so many things also missing that we need to teach. What is to know? First, we need to know what will be our legacy. And are we passing down that
5: October
3: legacy
5: or November?
3: Like, giving back to community is so important. Humare paas, mashallah. हम एडल्ट वॉलंटियर्स तो हैं बट वी हैव वंडरफुल
4: यूथ
3: वॉलंटियर्स एंड दो
6: यस इनकी माशाल्लाह दोनों बेटियां जो है वॉलंटियर करती हैं
1: माशाल्लाह
6: हमारी जो मेजर कोर कमेटी है उनके हमारी माशाल्लाह नहीं तो घर से छोटे हैं मगर इंशाल्लाह जब बड़े होंगे तो इंशाल्लाह दे विल बी जॉइन तो हम तो काम करते करते

0: हमारे बच्चे भी
1: बच्चे का
2: टॉप करना शुरू कर दिया यार
0: किसी के हस्बैंड किसी के स्पाउस मतलब हर कोई
1: ना हर कोई
0: फैमिली इन्वॉल्व हो रही है माशाल्लाह
1: वेरी नाइस
2: बहुत अच्छी बात है
3: वन डे दे विल बी द लीडर्स
1: दे विल बी द लीडर्स
3: ओनली वर्किंग फॉर अ कॉज वी आल्सो creating leaders yeah. and those leaders with the legacy
1: yeah.
2: Yeah.
3: they will lead us yeah. they will lead us with vision with education and with yeah. the same passion
2: yeah.
3: and aur hamare bacche mashallah itne talented hain aur like you just last weekend bhi bacche gave it a show pe aur just got to trust them like just be there to support them and let them let them
2: find out themselves
3: hum so proud we're so proud ki hamare youth volunteers and they take wo bacche mostly yahan hi born hue hain but they're so passionate about the cause because they see the parents are so involved but they see the cause itself is so unique
1: and above and beyond you know ab jab bhi hum jo hamara karte world fund show ke jab bhi hamara fund hota hai aap dekhe salma ji ke bacche involved hote hain मेरे हमारे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं मेरी बेटी एमसी करती है वो वीडियोस बनाने में हेल्प करती है फिर यू नो जब उनको यूनिवर्सिटी में जब भी होता है देन दे मेक दोस नोट्स कि दे आर हेल्पिंग दोस चैरिटीज सो दैट हेल्प देम टू गेट इनटू
0: तो जैसे अभी आप फरजाना पर ने कहा कि हम एक लेगेसी छोड़ के जाएंगे
1: या एग्जैक्टली
0: कि हमारी जो आगे की जनरेशन है ठीक है उनको पाकिस्तान से के हमारे भी ताल्लुक बाजी भी सा है
1: जी
0: मगर एक हमारे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर एक हमेशा रहेगा वो चीज हम अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं कि हमारे तो पाकिस्तान में अब जाने का हो नहीं सकता हम तो वापस चढ़ नहीं हो सकते अब जो फैक्ट मगर हम लोग जो वहाँ पे अंडर प्रिविलेज लोग हैं कम से कम
1: उनकी मदद कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल
0: ये नहीं कह रहा मैं खाली पाकिस्तान की मदद करो या इंडिया की करो या बांग्लादेश यहाँ पे भी काफी चैरिटीज है हम यहाँ पे भी करते
2: हैं
0: हर चैरिटी वी डू अवर कैपेसिटी
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: तो
1: हमजा अली अब्बास सॉरी सॉरी अच्छा हमजा अली अब्बास जो आ रहे हैं यहाँ पे कैलगरी में इन तो इनका एक जो है मैसेज है फॉर कैनेडियंस तो लेट्स हियर दिस वन आउट
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मैं हूँ हमजा अली अब्बासी और आप सबको दिल से खुश आमदीद कहता हूँ अक्टूबर और नवम्बर 2026 में कनाडा भर में होने वाली शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल की इस खास फंड रेजिंग सीरीज का हिस्सा बनकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। शौकत खानम सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं बल्कि उम्मीद रहमत और इंसानी खिदमत की एक रोशन मिसाल ये वो मिशन है जो मेरे दिल के बहुत करीब इस साल की अहमियत और भी ज्यादा क्योंकि ये वो दौर है जब शौकत खानम कराची अपने दरवाजे खोलने जा रहा है ये एक तारीखी कदम है जो पाकिस्तान में कैंसर की सहूलत को नए आफाक तक ले जाएगा लेकिन इस ख्वाब को मुकम्मल तौर पर कामयाब बनाने के लिए आप सबकी हिमायत आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है आज जरूरत इस बात की है कि हम सब अपना किरदार अदा करें और उन लोगों के लिए सहारा बने जो अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल जंग लड़ रहे हैं मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि इस सफर का हिस्सा बने मैं बेसब्री से कनाडा में आप सबसे मुलाकात का मुंतजर हूं
1: वन एंड ओनली हमजा अली अब्बासी जो कि ऑफकोर्स अपना कैलगरी में होंगे और 25 अक्टूबर को इनका जो है अपना फंडरेजर होने जा रहा है और उनकी टीम मेंबर यहाँ पर रिजवाना जी और ऑफकोर्स वजाद भाई यहाँ पर मौजूद हैं व्हाट एल्स डू वी नीड टू नो 6 बजे डोर खुलेगा और क्या हो एनी आइटिनरी है आपके पास क्या हो सकता क्या होगा
0: 6 बजे डोर खुलेगा
1: सर माइक पे बोलिए प्लीज
0: 6 बजे इंशाल्लाह डोर खुल जाएगा हमारा
1: जी
0: 6:15 6:20 का हम लोग अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे ठीक है ना
2: इंशाल्लाह
0: उसके बाद फिर इंशाल्लाह फिर हमारा एपिटाइजर है एपिटाइजर भी जो है ना वो बहुत खतरनाक किस्म का है ठीक है ना वो मैं बताऊंगा नहीं सर सिंपल
1: नहीं
2: ना
1: सैंपल
3: सैंपल
1: सैंपल
0: नहीं लाए सैंपल मगर इंशाल्लाह आपको डेरे में आएंगे
1: लुकिंग फॉरवर्ड टू यस यस
0: बिल्कुल मतलब रेगुलर वो पकौड़े और समोसे उस तरह का कोई वो नहीं है एपिटाइजर
1: एपिटाइजर वाओ ओके
0: अब मेन कोर्स मील है तो उसमें उसके बाद फिर पहले तो उसके बाद हमारा फंडरेजिंग उससे पहले फंडरेजिंग अब्बासी साहब के साथ
1: जी.
0: और फिर हमारा डिनर है और उसके डिनर के बाद जैसे आपने कहा कि हमारा जो है वो अभी उसके बाद हमारा एक म्यूजिकल फंक्शन है छोटा सा ठीक है ना तो इट्स लाइक अ फुल जैसे उन्होंने कहा कि इट्स अ फुल पैकेज ठीक है ना प्लस आपके $100 जो भी आप दे रहे हैं वो 100% जो आपके उसमें जा रहे हैं ठीक है ना और जो अगर आप डोनेट करना चाहें तो बिल्कुल

0: वो एक नोबल कॉज था. अब मेरा
1: फैमिली
0: के साथ
1: मैं
0: और ज्यादा
1: इसमें कर
2: रहा हूँ किसी और की खाले ना
1: जाए. बिल्कुल, वेरी वेल सेड भाई, वेरी वेल सेड. किसी माँ ना
2: जाए,
1: किसी और का बच्चा ना जाए, किसी और की बच्ची ना जाए, शौहर ना जाए. एक छोटी सी एफर्ट से अल्लाह तआला से कबूल करें. बिल्कुल सही, वेरी वेल सेड. थोड़ा बहुत जो एक और चीज है, न्यू फूड बैंड फॉर द यूथ. फ्लूट जो है बांसुरी की, जिसमें ट्रायंगल बजाने के भी होते हैं, बांसुरी बजाना, फ्लूट प्लस ड्रम. वी जस्ट स्टार्टेड एज ऑफ यस्टरडे, फर्स्ट प्रैक्टिस थी. इंशाल्लाह दे विल बी रेडी बाय नेक्स्ट ईयर इजीली. जब भी आपका नेक्स्ट इवेंट होगा ना, विल ब्रिंग देम आवर यूथ फॉर 5 मिनट मेबी, यू नो, खाली वो अपना जो प्रेजेंटेशन विल बी यूनिक फॉर आवर कम्युनिटी. इसलिए वो हमारे पास नहीं है.
3: The rightful applause to the
1: yes, yeah, yeah, yeah. Still, yeah, right, yeah. Yeah. From 6 years to the 16 years.
2: Wow. Yeah,
1: yeah. So just started yesterday.
0: Absolutely.
1: Yeah.
0: Yeah. Bring them on next year.
1: Yes, yes.
0: It'll be
1: an
0: honor for us.
1: I think it'll be so nice
2: to. It'll be so nice.
3: We need
2: to
3: know, because our youth is so talented.
1: Yeah.
3: And then we need to appreciate
1: that. Or music, as it is, it brings everyone together.
2: Happy, happy, happy thing. Yeah.
1: See, so many good things are today, guys. I think this is so nice to see.
2: Yeah.
1: जब भी अच्छे लोग आते हैं तो और भी अच्छी अच्छी बातें होती हैं.
3: थैंक यू सो मच.
1: नहीं नहीं, आई थिंक दिस इज ग्रेट. एक बार फिर से नाउ वी गॉट अबाउट जो है अपना 5 मिनट्स. तो 25 अक्टूबर को होने जा रहे, टिकट कहाँ से लें और क्या क्या, एक बार फिर से डिटेल शुरू करता हूँ.
0: टिकट जो है वो हमारी ऑनलाइन है, वेबसाइट हमारी है, एक जो हमारा जो पंपसेट है, जो फ्लायर है उसमें बार कोड है. बार कोड कैमरा अपना स्कैन करेंगे, आपको वेबसाइट पे ले जाएगा, हमारी सर्फ कैनेडा की वेबसाइट पे. वहां से आप बाय कर लें, टिकट बाय कर लें, टेबल बाय कर लें, स्पॉन्सरशिप बाय कर लें, जो आपके लिए इजी है बाय करें. वहां पर डोनेट भी कर सकते हैं. जैसे जलाल साहब ने कहा, यू डोंट हैव टू बी हियर फिजिकली, यू कैन डू इट ऑनलाइन. एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि लोग कभी यहाँ पे नहीं होते,
2: पहुंच नहीं सकते.
0: हाँ, फोर्ट मैक में होते हैं या आउट ऑफ टाउन होते हैं उसके, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं. ठीक है, अगर किसी को लिंक चाहिए पर्सनली, मेरा फोन नंबर है अगेन 403-700-4444. अगर किसी को चीज से कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी, आई एम जस्ट वन कॉल अवे, आई लव टू हेल्प यू आउट. एब्सोल्युटली. और उसके बाद हमारे ये सारी चीजें अगेन हमारे CRA रजिस्टर्ड हैं. ठीक है ना, इससे हमारा प्रॉपर ऑडिट होता है.
2: बिल्कुल.
0: ठीक है, और इसमें सब चीजें मतलब लेजिट किस्म की एक वो है, ऑर्गेनाइजेशन है हमारी.
2: सही बात
0: है, किसी किस्म की कोई वो दो नंबर या वो चीज नहीं है. हर चीज हर साल हम लोग यहाँ पे करते हैं माशाल्लाह, एंड वी आर मोर देन हैप्पी टू सर्व आवर कम्युनिटी.
2: बिल्कुल सही कहा आपने. नहीं नहीं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है और वो होता है हमेशा. लेकिन जाहिरी बात है, जब इंसान अगले साल के लिए सोचता है कि चलो मैं इसको और किस तरह इम्प्रूव करूं, तो वो शो करता है कि हाँ भाई, फर्स्ट जो काफी अर्से पहले हुआ, अब सेकेंड, ऐसे तक तो लोग और ज्यादा सराहते हैं इन चीजों को कि भाई ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा हो और जितना पैसा जमा हो सके वो अच्छी बात होती है. तो इंशाल्लाह नई टाइमिंग अच्छा है, दिन अच्छा है, और इंशाल्लाह हम सबकी कोशिश रहेगी कि हम पहुंचें और सबके साथ पार्टिसिपेट करें. तो इंशाल्लाह टाइमिंग 6 बजे डेरा बैंक्वेट हॉल में, और इनके आ रहे हैं हमजा अली अब्बासी आ रहे हैं, उसके बाद
1: तारिक
2: हमीद आ रहे हैं, तो जी सिंगर. तो इसलिए ये प्रोग्राम बहुत बहुत ज्यादा उम्दा नजर आ रहा है. तो सब आके इसको पार्टिसिपेट करें. आप ये नहीं है कि आपको हजारों डॉलर भी निकालने पड़े, आप कुछ भी देंगे वो जैसे कतरा कतरा एक समंदर बनता है. इसी तरह ये भी होगा कि आप जो भी देना चाहते हैं आप दे दें. आपके बच्चे इससे सीखते हैं हमेशा, तो इसीलिए बच्चों को भी जो आप ला सकते हैं, जो यूथ हैं उनको लेकर आए, जो समझदार हैं और इस चीज को से समझ सकते हैं कि भाई चैरिटी अच्छे कॉज के लिए करना कितनी बड़ी बात होती है.
1: तो यू नो जस्ट ऑन अ वेबसाइट मैंने अभी जो आज जो अपना सर्च इट सर्फ CERF कैनेडा सर्फ कैनेडा स्लैश कैलगरी डॉट कॉम. जब भी आप उसको जो है क्लिक करेंगे, इट विल टेक यू टू द शौकत खानम का इनका जो पेज है, वहां ले जाएंगे आपको इनके अपना वेबसाइट. एंड व्हेन यू क्लिक ऑन इवेंट्स, देन यू स्क्रॉल डाउन टू द कैलगरी इवेंट्स. तो यहाँ पे पूरे कनाडा के इवेंट्स का यहाँ पर है. फिर 25 अक्टूबर का वहाँ पर जो है अपना पोस्टर है, QR कोड भी है, प्लस इफ यू क्लिक ऑन इट, इट विल टेक यू टू द नेक्स्ट पेज जहाँ पर आप डोनेट भी कर सकते हैं, ई ट्रांसफर भी कर सकते हैं, एंड यू कैन बाय योर टिकट एज वेल. तो एवरीथिंग इज हियर, एवरीथिंग इज हियर. सो आई थिंक दिस इज ग्रेट. एंड अगेन आपने जैसे वजह भाई ने कहा कि इट

0: इट इज अप्रूव्ड बाय द CCRA तो आप जो भी डोनेट CRA तो आप जो भी जो है डोनेट करेंगे यू विल गेट योर टैक्स रिसीट एज वेल राइट एम आई राइट तो एक बार फिर से आज का जो शो है हमारा रेडियो शो इसको स्पॉन्सर किया है कंट्रोल्स टोयोटा इनका फोन नंबर 4032901111 रूबीना कासिम अली टीडी बैंक की स्पेशलिस्ट हैं फॉर द मॉर्गेज इनका फोन नंबर 4038707069 केयर सर्कल होम हेल्थ कैलगरी अगर आपने कोई सीनियर हो घर पे अगर आपको उनकी जो है रखवाली के या तो उनकी जो सहायता के लिए कोई चाहिए आपको अपना पर्सन सो दे कैन प्रोवाइड यू और दे विल Direct bill to Alberta Healthcare 587-9290 फिर है हमजा भट्ट फ्रॉम द भट्ट कड़ाही बैंकेट हॉल इनका फोन नंबर है 587-352-0094 नसीम ज्वेलर्स कैलगरी 825-987-5000 और फिर आइस बाय बशीर जो कि न्यू हराइजन मॉल में 403-720-3937 ऑफ कोर्स हमारे साथ रिजवाना जी हैं एंड वजाद भाई फ्रॉम द शौकत खानम इनका इवेंट होने जा रहा है फंडरेजर एक बार फिर से 25 अक्टूबर को डेरा बैंकेट हॉल 6 PM डोर्स ओपन फिर उसके बाद एपेटाइजर्स है फंडरेजर है फिर जो ऑफकोर्स जो फुल डिनर है और फिर हमजा अली अब्बासी जो कि पाकिस्तान ड्रामा के राइट
1: जी
0: जी ड्रामे के जो है अपना सेलिब्रिटी है प्लस तारिक हमीद फ्रॉम टोरंटो वो एंटरटेनमेंट आपको गाने की जिया अपना सुनाएंगे $100 की टिकट है यू कैन गेट ईच टिकट और फुल टेबल गेट अ टेबल ब्रिंग योर अदर कोलिग्स अदर फ्रेंड्स सबको साथ में ले आए एंड यू हैव फन राइट एंजॉय द ब्यूटीफुल इवनिंग्स संडे का दिन होगा आपने जाना कहीं नहीं होगा इसलिए नेक्स्ट डे काम है तो आइए एंजॉय कीजिए एंड देन गो बैक होम एंड स्लीप
1: थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग ऑल योर प्रेशियस टाइम और आप लोग आए अच्छा लगा और सब कुछ जानने को मिला सब लोगों को तो उम्मीद है आप लोग सब जरूर सपोर्ट करेंगे इसको अच्छे कॉज के लिए और हमें अब इजाजत दीजिए अपना ख्याल रखिएगा हमारा टाइम खत्म हुआ जाता है अल्लाह हाफिज गुड नाइट
0: तो इंशाल्लाह मैं मिलूंगा कल आपको फॉर द नेक्स्ट एडिशन ऑफ कॉफी जलाल कल हम बात करेंगे रेफरेंडम अल्बर्टा पर तो मेरे साथ होंगे इक्तदार आवान और फिर जो है साइमा जमाल सो शिल जॉइन अस और विल टॉक अबाउट जो अपना रेफरेंडम होने जा रहे अक्टूबर की 19th को कि हमें कैनेडा में रहना है कि नहीं रहना आज जो है अपना मेयर ने बड़ा अच्छा बोला मेयर ऑफ कैलगरी ने कि जिनको अपना अलग होने वो अमेरिका चले जाए अभी से गो टू अमेरिका
1: सही बहुत अच्छी बात
0: है यस इतनी मुश्किल से हमें ये मुल्क मिला है आप जो है यूक्रेन को पूछो कि वहां की क्या हालत है आप जाके ईरान को पूछो कि वहां की क्या हालत है तो आपको ये मुल्क मिला तो उसकी इज्जत करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें और लेट्स टॉक अबाउट टुमारो आई थिंक इट्स गोना बी लॉट्स ऑफ फन टॉक टुमारो विद इक्तदार भाई एंड सामा जमाल थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग सलाम नमस्ते कैलगरी ऑन रेडियो सुसंगम 94.7 FM
2: The time is 9 p.m.
3: You are listening to Fairchild Radio, CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.
4: अल्बर्टा में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जुर्म के लिए कोई जगह नहीं है हम पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दूसरे इदारों की मदद के लिए $8 मिलियन की सरमायाकारी कर रहे हैं ताकि अल्बर्टा के खानदानों कारोबारों और कम्युनिटीज के लिए खतरा बनने वाले गैंग्स एक्सटॉर्शन और मुजरिम नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके ये फंडिंग कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजीद मजबूत निगरानी खुफिया मालूमात डिजिटल फॉरेंसिक्स और तकनीकियाती फराहम करेंगे ताकि ऑर्गेनाइज्ड मुजरिम ग्रोहों का खात्मा किया जा सके और अल्बर्टा के बाशिंदों को महफूज रखा जा सके हुकूमत अल्बर्टा की जानिब से एक पैगाम
5: Whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
6: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਗੁਆਂਢ ਵਰਗਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕਸਲੀ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਸ਼ਾਪਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹਕਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਰੱਖਦਾ ਬਿਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਦਰਤ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਹਕਸਲੀ ਦੇ 12 ਸ਼ੋਅ ਹੋਮਸ ਵੇਖੋ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਡ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ genesisland.com
7: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ 94.7 FM

0: एयरपोर्ट दे नेड़े मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल। पंजाबी, हिंदी, उर्दू जां फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो, गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला वड्डा शोरूम। सब दा माण, सब दी चाहत, अपनी सुपनमई कार खरीदने लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो जां फिर फोन कर लो 4039036757। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स। कैलगरी वासियों, कि तुसी लंबी लाइना अते डॉक्टर दिया वेटिंग लिस्ट तो परेशान हो, खुद फिकर छड्डो क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया है सेहत दा असली पहरेदार। ओएसिस स्माइल मेडिकल सनरिज मॉल दे नाल सुपर स्टोर वाले प्लाजा विच स्थित इस क्लिनिक विच तुहाडी अपनी भाषा बोलन वाले मेल अते फीमेल डॉक्टर्स हर कदम ते तुहाडे नाल हन, चाहे गल होवे बच्चियां दी या फिर बुजुर्गां दी। इत्थे सारेयां लई सुविधावां मौजूद हन। अपॉइंटमेंट नहीं बनी, कोई चक्कर ही नहीं, सिद्धे चले आओ। इत्थे वॉक इन विच खुला स्वागत है, नवे पेशेंट्स दा वी निग्गा वेलकम। फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इक्को छत हेठ। असी हफ्ते दे 6 दिन खुले हां ते ओ वी देर शाम तक। ता देर किस गल दी, अज ही डायल करो 5876174696 587-617-4696। ओएसिस स्माइल मेडिकल, तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी। 5876174696।
1: बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं तो चार दिला दे।
2: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुंचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 647-702 V23
3: लाइसेंस नंबर 10394।
0: कैनेडा विच रहंदिया इंश्योरेंस दी बहुत अहमियत है। किसी भी तरह दी इंश्योरेंस लई पंजाब इंश्योरेंस दे रीजनल मैनेजर हरपिंदर सिद्धू नाल आज ही संपर्क करो। सुपर वीजा, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, RESP दिया वधिया सेवावां लई पिछले लंबे अरसे तो कैलगरी विच जानिया पहचानिया नाम है हरपिंदर सिद्धू। ए इंश्योरेंस लई नामवर कंपनियां नाल काम करदे हन। होर जानकारी लई पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिद्धू नाल 403-404-3500 ते संपर्क करो। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦਿਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
4: ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੈਡਲ ਰਿਜ ਡੈਂਟਲ ਸੈਂਟਰ।
0: ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਡਲ ਰਿਜ ਡੈਂਟਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਡਾਕਟਰ ਚੌਂਗ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕਅਪ, ਕਲੀਨਿੰਗ, ਫਿਲਿੰਗ, ਦੰਦ ਕੱਢਣ, ਰੂਟ ਕਨਾਲ, ਕਰਾਊਨ ਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ।
4: ਇੱਥੇ CDCP ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਿਲਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੈ।
0: ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
4: ਸੈਡਲ ਰਿਜ ਡੈਂਟਲ ਸੈਂਟਰ, ਸੈਡਲ ਟਾਊਨ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ, ਬੈਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, 216 ਸੈਡਲ ਟਾਊਨ ਸਰਕਲ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ।
0: ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 4037302026 403-730-2026। ਸੈਡਲ ਰਿਜ ਡੈਂਟਲ ਸੈਂਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ।

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 647702 V23
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो, हुण कनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया।
3: कनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल। पंजाबी, हिंदी, उर्दू जा फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो, गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला वड्डा शोरूम। सब दा माण, सब दी चाहत, अपनी सुपनमई कार खरीदन लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो जा फिर फोन कर लो 4039036757।
2: मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स।
4: ओहो, आज फेर नहीं लोड मिलिया।
5: की होया?
4: बस पूछना, इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम ते, ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है, ते बच्चियां नू फेर नहीं मिल होना दो दिन।
5: ओहो, रह गए ना फेर पिछे। मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दिंदी है, ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दिंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको, बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नू फोन करो ते जल्दी जल्दी गाल करके कोई हल लब्बो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001। सोनिक इंश्योरेंस।
6: फ्लाइट बहुत लेट हो गई, खान ले बर्गर ले लिए?
7: ना जी, अप्पा ते गर्मा गर्म रोटी खावांगे।
6: माले नखरे ना करो, मेथों रात दे 3 बजे रोटियां नहीं पकदियां।
7: ओहो, तुहानू नहीं कष्ट देना, अप्पा चलना समोसा हाउस इंडियन कुजीन एंड स्वीट्स जो 24 घंटे खुले हुंदे ने।
6: समोसा हाउस इंडियन कुजीन, ब्रेकफास्ट विच गर्मा गर्म परौठे, लंच एंड डिनर विच पूरियां, छोले भटूरे, फिश टिक्का, चाइनीज इंडियन फूड, हर प्रकार दीयां मिठाइयां अते केटरिंग भी करदे ने। इंडियन कॉफी अते कुल्लड़ स्पेशल चाह भी इन्हां कोलों मिलदी है। हर प्रकार दे खाणे लई शानदार रेस्टोरेंट समोसा हाउस इंडियन कुजीन एंड स्वीट्स, ओपन 24 आवर्स, यूनिट 2154 43101104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कॉल 403-461-6161।
5: कैलगरी वासियों, की तुसी लंबी लाइना अते डॉक्टर दिया वेटिंग लिस्ट तो परेशान हो, खुद फिकर छड़ो क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया है सेहत दा असली पहरेदार। ओएसिस स्माइल मेडिकल सनरिज मॉल दे नाल सुपर स्टोर वाले प्लाजा विच स्थित इस क्लिनिक विच तुहाडी अपनी भाषा बोलन वाले मेल अते फीमेल डॉक्टर्स हर कदम ते तुहाडे नाल हन। चाहे गल होवे बच्चियां दी या फिर बुजुर्गां दी, इत्थे सारयां लई सुविधावां मौजूद हन। अपॉइंटमेंट नहीं बनी, कोई चक्कर ही नहीं, सिद्धे चले आओ। इत्थे वॉक इन विच खुला स्वागत है, नवे पेशेंट्स दा वी निग्गा वेलकम। फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इक्को छत हेठ। असी हफ्ते दे 6 दिन खुले आ ते ओ भी देर शाम तक। ता देर किस गल दी, आज ही डायल करो 5876174696 587-617-4696। ओएसिस स्माइल मेडिकल, तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी। 5876174696।
8: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो। किसी भी उम्र दियां 2 पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट, सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे। साडे तजुर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण। ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते। पासपोर्ट तो लैके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां। पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो। तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060, 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सुवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पिक्सल फोटो स्टूडियो, जिंदगी दे पलां नू कैद करदे होए इक फोटो इक वार।
5: कनाडा विच रहंदिया इंश्योरेंस दी बहुत अहमियत है। किसी

हर प्रकार के खाने वाली शानदार रेस्टोरेंट समोसा हाउस इंडियन कुजीन एंड स्वीट्स ओपन 24 आवर्स यूनिट 2154-4310-104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉल 403-400-4 0346161 6161